कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

तेरे मंजिल के वो तेरे मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का पास है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी सगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाएगी।

0: जाओ रे जाओ रे दुख जाओ रे ओ मुझे बाल माँ अब न सताओ रे
1: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।